FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 9:10 पर सुनिए दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा वंदना सुबह 9:20 पर। कार्यक्रम इनसे मिलिए जिसमें हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे होम्योपैथिक डॉक्टर श्री राम शर्मा से सुबह 9:40 पर। गाने पुराने ज़माने के ये कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे और 10:30 पर सुनिए गाने नए तराने नहीं।

शाम 5 बजे सुनिए कार्यक्रम युववाणी। उसके बाद 5:30 पर होगा कार्यक्रम महिला जगत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 6:05 पर, और कार्यक्रम माटी के स्वर 6:20 पर सुनाया जाएगा। शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी। उसके ठीक बाद 7:30 का समय रहेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का, जिसे आप सुनेंगे 7:30 पर। फिल्मी गजलें सुनिए रात 8 बजे, और गाने नए ज़माने के, जी हाँ, ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। रात 9 बजे सुनिए सुगम संगीत, जिसमें गैर फिल्मी गीत और गज़लें सुनवाई जाएंगी। FM & 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9 बजने वाले हैं अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में एआई के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। जयपुर में 19 और 20 अगस्त को आयोजित ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक में इन विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद अब पर्यटन मंत्रियों की बैठक में इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक के माध्यम से भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को नई गति देना तथा सदस्य देशों के बीच पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देना है। उधर आज पुणे में ब्रिक्स संचार मंत्रियों

0: की बैठक होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न विभागों से संबंधित प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी। कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे, साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया जाएगा। वित्तीय कार्य के तहत वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम संकलन पर चर्चा, मतदान और पारण की कार्यवाही होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित जिलों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा का काम जारी है। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सवाई माधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। जैसलमेर में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सलूम्बर में स्वीप गतिविधियों के तहत दीप जलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने मीडिया को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
1: मीडिया के माध्यम से हम ये सभी को ये कहना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो भी चुनाव होंगे बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कानूनन कार्रवाई करने में किसी को परेशानी नहीं हो। उनसे भी हमारे आह्वान रहेगा कि जो भी नियम है उसकी पालना करते रहे, आप अपना चुनाव प्रचार करें, चुनाव लड़े।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। कल जयपुर में हुई यूएई राजस्थान टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट की राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति से समृद्ध राजस्थान में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी निवेशकों को हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बैठक में यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी ने कहा कि यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं। श्री अलमरी ने जयपुर और दुबई के बीच हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की भी बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुबई यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर यह मंजूरी दी गई है। आदेश के अनुसार उनका सेवा विस्तार 1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगा। गौरतलब है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल इस महीने की 31 तारीख को समाप्त हो रहा था। पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्यस्तरीय वेबिनार आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संवाद करेंगे। इस दौरान विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। वेबिनार का उद्देश्य पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

0: जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं और जौ पर 3 दिन की 65वीं राष्ट्रीय कार्यशाला कल संपन्न हुई। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि कार्यशाला में गेहूं और जौ की उत्पादकता बढ़ाने, बदलती जलवायु के अनुरूप नई किस्में विकसित करने, रोग और कीट प्रबंधन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर चर्चा हुई।
1: भारत सरकार के द्वारा वो प्रजातियां बनेंगी और कुछ जल्दी ही समय में वो किसानों तक पहुंचेंगी। इनमें से 13 गेहूं की और 11 जौ की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है, जिनका की प्रपोजल आगे भेजा जाएगा गवर्नमेंट को। छिलका रहित जौ की बात हुई है और उसकी कुछ प्रजातियों को भी चिन्हित किया गया है। गेहूं में भी जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, इस बार हमारा जो देश है उसने 120 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया था और अब उसके गुणवत्ता पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उनके उत्पाद जो बनाए जाते हैं उनके लिए विशेष प्रजातियों का को चिन्हित किया जाए आगे आने वाले दिनों में।
0: चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जयपुर में आयोजित विभागीय बैठक में टीबी रोगियों का 100% उपचार शुरू करने, स्क्रीनिंग और जांच बढ़ाने तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कपासन में गर्भवती महिला की मृत्यु के मामले में संबंधित एएनएम और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव के बाद देखभाल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषादराज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषादराज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषादराज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से

छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का ये पहला भजन सुमन कल्याणपुर और गोविंद की आवाज़ में है।

नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अक्षरों का समावेश है। र जोड़ आ जोड़ म, र सूरज की शक्ति रखता है जो ज्ञान को उत्पन्न करता है। आ अग्नि की शक्ति रखता है जो पाप नाशिनी है। म चंद्रमा की शक्ति रखता है जो अमृत प्रदान करता है। अतएव राम नाम के जापक को

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें आज आप सुनेंगे गॉल ब्लैडर और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक उपचार के बारे में डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: मैं आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, आज जो हमने विषय लिया है वो है गॉल ब्लैडर की और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक उपचार।
2: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं कि चाहे वो गॉल ब्लैडर की पित्ताशय की स्टोन हो या किडनी का स्टोन हो, ये समस्या आम है।
2: जी, जी।
1: स्त्री पुरुषों सब में है और ये मतलब हम देखते सुनते हैं। तो अब यहाँ ये सवाल आता है कि पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं।
2: जी।
1: हालांकि हमारे श्रोताओं को काफी कुछ इसके बारे में थोड़ा पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि जो गॉल ब्लैडर की पथरी है और जो किडनी की मतलब पथरी है, उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहले हम कारणों की बात करें तो क्या कारण होते हैं इसके।
2: जी, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन दोनों अलग अलग चीज है। किडनी स्टोन तो होता है गुर्दे के अंदर और गॉल ब्लैडर स्टोन होता है पित्त की थैली के अंदर। लीवर के नीचे जो पित्त की थैली स्थित होती है उसके अंदर अगर बाइल जो सीक्रेट होता है अपना, और उसमें कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट अगर ज़्यादा मात्रा में हो और वो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट उस गॉल ब्लैडर की भित्ति पे चिपक जाते हैं और वो एक जो हार्ड पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं उसको तो अपन गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, और गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है उसको अपन किडनी स्टोन कहते हैं, और गुर्दे के बीच में जो अगर पथरी बनती है तो उसको अपन ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रोलिथेथाइसिस कहते हैं, और वही पथरी आगे आके अगर उस नली के अंदर फंस जाती है, नली के अंदर बन जाती है, तो उसको यूरियोलिथाइसिस कहते हैं। दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों में दर्द की प्रकृति अलग अलग होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन

0: अलग होता है, गुर्दे की पथरी का फॉर्मेशन अलग होता है।
1: जी, तो गुर्दे की पथरी के फॉर्मेशन के लिए, जैसे आपने गॉलब्लैडर के लिए तो बताया कि जो मतलब,
0: बाइल सीक्रेट होता है
1: हाँ
0: और उससे वो बनती है।
1: जी,
0: तो
1: तो ऐसे ही
0: गुर्द
1: उसके गुर्दे की पथरी के क्या कारण हो सकते हैं?
0: हाँ गुर्दे की पथरी अपने यहाँ इस एरिया में लगभग 80 से 90% तक लोगों के कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की स्टोन बनती है। और जनरली चार प्रकार की पथरी होती है गुर्दे की, जिसमें एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली होती है, यूरिक एसिड स्टोन होता है, स्ट्रूवेट स्टोन होता है, और सिस्टीन टाइप का स्टोन होता है। तो 60 से 80% तक लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट वाली स्टोन बनती है, और यूरिक एसिड वाले स्टोन 10% तक लोगों को बनती है, और सिस्टीन टाइप तक के स्टोन 1 से 3% लोगों को बनती है, और स्ट्रूवेट स्टोन जो है 6 से 7% लोगों को बनती है।
1: डॉक्टर साहब, सरल भाषा में अगर हम बात करें तो क्या कारण इसके होते हैं गुर्दे के पथरी के, कि मतलब किस तरह का खान पान हुआ, किस तरह की चीजों की अधिकायत हो, या किस तरह का हमारा रहन सहन है जो कि इस तरह के किडनी के स्टोन बनने के कारण होते हैं?
0: हाँ, जो अपने सरल भाषा में मैं अगर बात करूँ तो कैल्शियम की जो रिच डाइट लेते हैं, जैसे कि पालक हो गया, भिंडी हो गई, टमाटर हो गया, बीज वाली जो भी चीज़ें अगर कै और जिनमें उनके कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो उसका सेवन अगर अपन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कर देती है।
1: तो इस तरह से मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या आपके कैल्शियम की ज्यादा हो, यूरिक एसिड का भी आपने बताया था,
0: हाँ
1: यूरिक एसिड की भी बड़ी समस्या रहती है।
0: यूरिक
1: यूरिक एसिड के कारण कई बार जोड़ों में दर्द की भी समस्या होती है
0: जी बिल्कुल होती है। यूरिक एसिड की वजह से
1: जी, तो
0: जोड़ों
1: ये
0: में
1: यूरिक
0: दर्द,
1: एसिड किस तरह से मतलब इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा इसके बारे
0: यूरिक
1: में?
0: एसिड जनरली जॉइंटों में ये क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और यूरिक एसिड अपनी किडनी थोड़ा सा उनको ये एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालती है। लेकिन अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंटों के रूप में जॉइंटों के बीच में जमा हो जाता है तो गाउट का रूप ले लेती है, और उसको अपन जॉइंटों में जो पेन होता है उसको गठिया का रूप कह सकते हैं यूरिक एसिड। और यही अगर किडनी में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं उसके, तो उसको अपन यूरिक एसिड स्टोन कह सकते हैं। ये थोड़े हार्ड होते हैं और मुश्किल से निकलते हैं,
1: जी,
0: और इसमें जो है कि अपने गुर्दे की पथरी का जो दर्द है वो अपने गुर्दे के पीछे की साइड में स्थित होगा। दर्द के साथ में आपको उल्टी भी हो सकती है, उसके साथ में आपको जी मचलाना ये इस तरह का हो सकता है, कभी कभी पेशाब में जलन होगी, पेशाब रुक रुक कर आएगा, और
1: जी,
0: पेशाब में कई बार ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है, उसको अपन हिमेचूरिया कहते हैं। तो
1: जी
0: ये सारे लक्षण अगर आपको दिखे, पीठ के पीछे दर्द हो, और वो दर्द आगे शिफ्ट भी हो सकता है अपनी नाभि के आसपास, तो
1: जी
0: पीठ के पीछे दर्द होना, नाभि के आसपास दर्द होके फिर उल्टी होना, जी मचलाना, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब की शिकायत होना, थोड़ी मात्रा में पेशाब लगना, और इसके साथ में ये लक्षण हो तो अपने को डाउट कर लेना चाहिए कि भाई ये किडनी स्टोन हो सकता है। और
1: जी
0: फिर इसकी जांच के लिए अपने को ये है कि भाई इसका एक्सरे करवा सकते हैं अपन भूखे पेट। उसका एक्सरे का नाम होता है KUB एक्सरे, जैसे किडनी, यूरेटर और ब्लडर, इनका एक्सरे अपन करवा सकते हैं। सोनोग्राफी से अपन पता लगा सकते हैं, पेशाब की जांच करके अपन पता लगा सकते हैं कि भाई स्टोन है क्या।
1: जी
0: और हमारे होम्योपैथिक में बहुत
1: डॉक्टर साहब,
0: अच्छी
1: मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको यहाँ। जब हम लक्षणों की बात कर रहे हैं तो कई बार जो है वो पेशेंट को बड़ा तेज दर्द होता है इसकी वजह से, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, चाहे वो गुर्दे का स्टोन हो, गुर्दे का हो चाहे वो गॉल ब्लेडर का स्टोन हो, तो वो स्टेज आए उससे पहले ही क्या व्यक्ति किस तरह से मतलब प्रिकॉशन ले, क्या जागरूकता वो बरते कि वो जो भयंकर दर्द से पीड़ित हो उससे पहले ही वो अपने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे, इसका उपचार शुरू कर दे?
0: जनरली तो एसिम्टोमेटिक होता है ये पेन जो होता है वो, कोई सडन होता है, इसमें कोई प्रिकॉशनरी अपन पहले अपन कह नहीं सकते कि भाई ये पेन होगा अपने को। या तो जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री हो स्टोन बनने की, तो अपने को एक जरूर आगाह हो सकता है कि भाई पास्ट हिस्ट्री अपने स्टोन जिसको बन गया है तो उसको तो वापस पता लगेगा कि भाई वापस उसी सिचुएशन में वहाँ पर दर्द होगा। तो वो प्रिकॉशनर के तौर पे पेलेंटी ऑफ फ्लूड लें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर इंटेक करें, और साथ में नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जैसे बादाम है, करेला है, पाइनएप्पल है, नारियल पानी है, दही छाछ है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन मात्रा में करें तो गुर्दे के स्टोन जो छोटी स्टोन्स हैं वो आराम से पास आउट हो सकती है। 6 से 7 mm तक के स्टोन, 5 से 6 mm तक के स्टोन आराम से पास आउट हो जाती है।
1: जी
0: और बड़े स्टोन्स के लिए भी होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है, उनसे वो ब्रेक डाउन होके और आराम से निकल जाती हैं।
1: जी कुछ हर चीज को लेकर मिथ तो हमारे यहाँ होते ही हैं, तो इस स्टोन को लेकर भी कुछ मिथ हैं हमारे, या वो मिथ हैं या सच्चाई है ये तो आप बताएंगे। कि
0: हाँ
1: जैसे एक तो ये कहा जाता है कि भाई जब आपके स्टोन की समस्या हो तो बीज वाली चीजें नहीं खाएं, उसमें टमाटर वगैरह ऐसे पालक वगैरह के लिए लोग कहते हैं, और एक और बात कहते हैं कि अगर आपके स्टोन की समस्या है तो आप बीआरपीओ, बीआरपी से आपका स्टोन रिमूव हो सकता है।

0: अगर छोटा स्टोन है तो वो कहाँ लग
1: एल्कोहल का
0: सकता
1: कंजप्शन वैसे नहीं करना चाहिए, इसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो उसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो के पानी होता है तो ऑक्सलेट की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो जनरली अपने ये है कि भाई फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर आपको यूरिन पास आउट ही करना है, अपने को यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, तो दही छाछ पी के भी बढ़ा सकते हैं, नींबू पानी पी के भी बढ़ा सकते हैं, एल्कोहल का कंजप्शन अपने को नहीं करना है उसमें,
0: जी?
1: ये सही नहीं है। इसमें एल्कोहल के अलावा भी आप जैसे अपने को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, किडनी में सूजन आ जाती है कई बार, और बहुत सारे लक्षण होते हैं इसकी वजह से, स्टोन में एल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए जनरली।
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब होम्योपैथी की बात हम करें तो अक्सर हम देखते हैं कि जो एलोपैथी में है वो सर्जरी ही इसका इलाज मानते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इस तरह का क्या मतलब उपचार है उपलब्ध कि जो स्टोन है उसको बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के वो बाहर निकल जाए, उसके चाहे वो उसको क्रेक करके, पीसेस करके, चाहे वो घोल के, या चाहे वो छोटा है तो वो पेशाब के थ्रू निकल जाए, किस तरह की मतलब मेडिसिन इसमें होम्योपैथी में क्या उपचार है?
1: होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है सर, वो लक्षणों के आधार पर आधारित है। हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में अलग अलग टाइप की दवाइयाँ आती है। अगर राइट साइड में आपका स्टोन है तो उसकी मेडिसिन अलग आएगी, गुर्दे की बीच में है, नली में है पथरी तो अलग दवाई है, लेफ्ट साइड में है तो अलग दवाई है, उस तरह से सिम्टोमेटिक अपन ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे बर्बरिस वल्गरिस आती है, हाइड्रेंजिया आती है, ओसिमम कैन आती है, परेरा ब्रावा आती है, कैंथेरिस आती है, बेलाडोना है, कोलोसिंथ है, बहुत सारी मेडिसन्स हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट और उसके सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों को देखकर और किडनी के वो स्टोन की सिचुएशन को देखकर उसके आधार पर दी जाती है कि भाई कहाँ पर कौन सा स्टोन कहाँ पर है, कितनी साइज़ का है। उसको अगर छोटा स्टोन है तो उसको पास आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ाने की दवाई दी जाएगी, अगर बड़ा है तो उसको क्रश करके निकालने के लिए दवाई दी जाएगी। और
0: जी
1: गाल बेडर स्टोन के लिए सबसे बड़ा मिथ है कि भाई ये विदाउट सर्जरी कैसे निकलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर्जरी से चलो मान लिया नहीं निकल, उसमें ये है कि भाई डिजोल्व तो हो ही सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट से ये बनता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट से बनता है तो अपन मेडिसिन दे के उसको डिजोल्व कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की डाइट अगर कम खाए, फैटी रिच फूड कम खाए और फैटी डाइट कम ले, तो ये स्टोन फॉर्मेशन बनने की भी कैपेसिटी भी कम होगी। और गाल स्टोन जो है जनरली फीमेल्स को ज़्यादा होता है, मेल्स को कम होता है। अपने
0: जी
1: लीवर के नीचे छोटा सा एक पाउच जैसा होता है, उसको गाल बेडर
0: पित्ताशय।
1: पित्ताशय होता है, उसमें पित्त स्टोरेज रहता है, 50 ml तक का पित्त उसमें स्टोरेज रहता है, और वो अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर वही पित्त जो है हाई कोलेस्ट्रॉल वाला हो और कोलेस्ट्रॉल की मतलब उसका फॉर्मेशन गलत तरीके से हो गया हो, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। और
0: जी
1: अपनी होम्योपैथिक दवाई से यह है कि कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके या उसको डिजोल्व करके हम उसको डिजोल्व कर सकते हैं।
0: जी
1: यह
0: यानी होम्योपैथी में भी जो उपचार है वो हर मरीज के लिए अलग अलग तरह की दवा है, उसके लक्षणों के आधार पर जो चिकित्सक है उसकी देख रेख में ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए,
1: जी
0: अपने स्वयं के मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं
1: सेल्फ
0: करना चाहिए।
1: मेडिकेशन तो इसमें है ही नहीं,
0: जी
1: क्योंकि होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन पर काम करती है।
0: जी
1: हम लोग जो है बीमार बीमारी के बजाय बीमार का इलाज करते हैं, रोग की
0: जी
1: बजाय रोग के लक्षणों पर आधारित ट्रीटमेंट करते हैं हम।
0: जी जी तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि ये जो स्टोन की समस्या है, पथरी की समस्या है, वो उसको लेकर जो भी आपके दिमाग में सवाल होंगे वो आप उनको यहाँ उत्तर आपको मिले होंगे, और आप एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हुए इस पथरी की समस्या से निजात पा सकते हैं, और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में इसकी काफ़ी अच्छी दवाएं हैं, तो वो आप अवश्य उनको ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए में गॉल ब्लैडर और किडनी की पथरी का होम्योपैथिक इलाज के बारे में डॉक्टर श्रीराम शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के।

कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म क्या यही प्यार है से अलका याग्निक, कुमार शानू और सोनू निगम का गाया हुआ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: ये है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम फिल्म खुदगर्ज में।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी

समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240 168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मुझे भी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ आपने क्या कर दिया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए। यह है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लुका छुपी से तुलसी कुमार की आवाज में।

0: के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: जबरिया जोड़ी में अभी आपने सुना देव नेगी और उनके साथियों को।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म मुसाफिर में सुनते हैं सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान को।

विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। आइए सुना आप ही, आपने सुना इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया था शिल्पा राव और सचिन ने। और यह है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म क्या लव स्टोरी है से अलीशा चिनॉय का गाया हुआ।

0: गाने नए, तराने नए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आईना ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये कवाली अभी आप सुन रहे थे। अमर अकबर एंथनी फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेड इन इंडिया एल्बम का नाम था बिडू का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

यूनिक, ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था।
1: ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
5: ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है?
6: उजाले उनकी यादों की, 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चूनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन का म्यूजिक था और उन्होंने इसे लिखा।

अनामिका की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कैट वॉक एल्बम का नाम था। इसके साथ ही आज का ये रंग तरंग प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का

0: समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस सुरभि कात्याल, जो कि एक मनोविज्ञानी हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे आज हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें करेंगे, जो कि आज के समय में बहुत ही सामयिक है और जो खासतौर से हमारे युवा साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गुलजार ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें

0: कमाल तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2222

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में आयोजित की जा रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और बेमिसाल मेहमान वाजी की मिसाल है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये मेहमान अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। गौरतलब है कि दो दिन की इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में AI के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन और बिना अनुमति राजनीतिक सभा और जुलूस पर रोक लगाई गई है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करने और प्रचार सामग्री तथा सोशल मीडिया के संबंध में निर्वाचन आयोगों के निर्देशों की पालना करने को कहा है। भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में अधिकारियों को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने और स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू में स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का आयोजन कर लोगों को निर्भीक होकर मतदान के लिए जागरूक किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश के PM श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ वेबिनार के माध्यम से संवाद किया। जयपुर में हुई इस वेबिनार में स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया गया। ये वेबिनार PM श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये वेबिनार हर महीने आयोजित की जाएगी। साथ ही अन्य राज्यों के स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने पर विचार किया जाएगा। नीट PG परीक्षा 2026 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में 48 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल परीक्षा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागों से आपसी तालमेल के साथ परीक्षा की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात सहित सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जल्द ही राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र और शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्र के माध्यम से राजस्थानी भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति और शोध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शोधार्थियों को राजस्थानी भाषा के अध्ययन का अवसर मिलेगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर में

0: 3 सेंटीमीटर, 12 के शाहबाद और अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 2-2 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। 12 माउंट आबू, अलवर और टोंक सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश हुई। बारिश का दौर कमजोर पड़ने पर राज्य में गर्मी और उमस का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निषिद्ध ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है। प्रिय की अनुपस्थिति में हर आहट उसका आभास देती है। जब बरसों बाद दो निगाहें मिलती है तो लगता है जैसे सारी तन्हाइयां एक पल में सिमट गई है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सावन की हर बूंद किसी पुराने खत का भीगा हुआ अक्षर हो। बरसों का इंतजार, वही रास्ते, वही शामें और किसी की आवाज की बची हुई गर्माहट सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी भी बार ये गीत सुन लें लेकिन मन नहीं भरता है। तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरो कर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सबने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में। वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव है वो साझा अगर आप हमसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इबारत लिखी है कि एक शाम वो मौसम, इस तरह का अगर कुछ आपको अपना अनुभव शेयर करना है, लिखना है, लिखें बहुत ही कम शब्दों में ताकि हम शामिल कर पाएं। चलिए इस प्रोग्राम के दूसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं।

बालिका वधु इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। बालिका वधु, अमित कुमार, आनंद बख्शी, आपने पूरी डिटेल्स भेजी है इस गीत की और इस गीत को बहुत पसंद किया है ऐसा सबने लिखा है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है और उनका मतलब ये है कि आज के इस प्रोग्राम में बारिश और लव सॉन्ग्स मेन अट्रैक्शन होगा। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे दूसरे श्रोता हैं जो लिखते हैं, अपनी अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि शाम का मौसम बहुत बदला हुआ था। पिछले हफ्ते मेरी धर्मपत्नी और मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने कश्मीर गए थे। शाम के समय हम बाबा बर्फानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से मौसम का मजा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहां बहुत खूबसूरत लगती है वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज सही मात्रा में, सही जगह, सही समय सही लगती है और अगर वो ज्यादा हो जाए, अति हो जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफी दिनों से तरसा रही है और विविध भारती के सुरीले सफर में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार, सावन लगातार छाया हुआ है लेकिन हमारे यहां पर बारिश नहीं।

हो रही है, हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत है, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, जहां शब्दों की गहराई उभर कर आती है, और इसीलिए ये आवाज की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता, बल्कि बारिश की चादर में लिपट कर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है, लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है। अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो जरूर लिख भेजें, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे। खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है, आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतज़ार है ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल जरूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना जरूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
3: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतजार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतजार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतजार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ जरूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंतजार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार किया, लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी, जब

छोटी थी और बाबा काफी लेट आया करते थे। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी। तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है। जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है। यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है, रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है। हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई। और ये जो इंतज़ार है, लंबा इंतज़ार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतजार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतजार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतजार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतजार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस जी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस टी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूं कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं। यहां पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि द्वारका जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतजार कीजिए और इंतजार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतजार रहेगा।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाजों में गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना। अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो

विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफर से अनुराधा को दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस

रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष, मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणा रंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
0: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने

0: वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जन समुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
1: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
0: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जन समुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था।
1: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

काल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष शांभुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो, ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
0: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
4: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
5: मिलो जो तुम्हें बताए।
4: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
6: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
4: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं

0: निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
1: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
2: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
3: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
2: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले

0: देगा। एक रिपोर्ट।
1: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय

देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगर।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमति फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां? विविध भारती के स्टूडियो में। और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं? क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया है इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई भी
1: रहती है। भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती। पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार बहनें हैं सबकी। सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना दी है, इसे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी, तो वैशाली जी बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से, अरे वाह। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर? कहाँ से शादी हुई है?
1: अपन महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई है शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी, पहली आएगी।
0: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले ना।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा
0: तो चलिए सुनते हैं।
2: मेरा

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक,
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ विविध भारती से, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं,
1: हाँ,
0: है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं
1: मैं
0: आप, बताइए।
1: पारस मणि फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: बीकॉम कर रही है।
1: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
0: हाँ वही इंतजार चल रहा है ना।
1: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों।
0: हाँ मन खुश रहता है ना।
1: और आज आप
0: हाँ
1: ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
1: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? और रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी
1: बिल्कुल,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। आगे हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत
0: देखी।
1: सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए हैं ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़
1: जी,
0: मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, सब कुछ नहीं, और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में, तो
0: अरे वाह, तो घर में तो सब
1: इसलिए।
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी मैम,
0: ऐसा हो जाता है जहां पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया
1: मैम,
0: है ना?
1: वो
0: तो
1: इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती
1: मेरा
0: हैं
1: इंतजार करती है मैम, एक भी नहीं जाती है।
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
0: जी
1: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा।

0: चाहिए।
1: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और नंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
1: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान। साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: वक्त हो चला है एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?

0: रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं, समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी, ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसे मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं,
1: जी
0: और फिर
1: जी
0: यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को,
1: जी
0: उनकी भी तो बहनें हैं
1: जी
0: ना, वो लोग आए राखी
1: जी
0: बांधने के लिए।
1: जी फिल्म
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इशिका। और बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
5: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग
4: जी। तो चलिए सुनते हैं आपके लिए आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सैली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते।
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। जी
0: साबरमती से प्रमिला महेश जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। हाँ
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग वगैरह महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना वाना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी।
0: सहेली और आपका तोरण बनाने का साथ,
1: जी
0: ये
1: मैम
0: हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से। जी
0: प्रमिला जी, तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है,
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे, अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। वो एक दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, तो मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा जी।
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी
0: जी?
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ,
1: एक
0: हम
1: भैया है उनसे भी हम
0: जी,
1: अच्छे
0: हम
1: रहते हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
1: जी जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी?
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने का
0: ये बात तो है।
1: और जाना
0: तो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ जी
0: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती है
1: जी
0: ना?
1: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात है जी, हाँ,
1: हाँ जी
0: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी? तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात
1: जी
0: है। तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ जी
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना।
1: हाँ जी जी
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी
1: और एक बेटा है प्रियन मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात है।
1: उसकी बेटी है अलिश्का 8 साल की।
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही है। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था।
0: जी
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे,
0: जी
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयाँ आप
1: हाँ जी
0: बनाती हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर स्पेशली, मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में,
0: अरे
1: सबको
0: वाह।
1: मेरे हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 33 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो
0: जी
1: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज डांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो
0: ओहो
1: त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है।
0: जी।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से। जी
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान की।
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेज ही हो रही है। अभी गर्मी चल रही क्योंकि सितंबर जो महीना है वो, उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी। फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर
1: जी
0: सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ,
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यहाँ डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते हैं और
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी
1: हाँ
0: कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निगहत जान,
1: जी,
0: आप।
1: मैं गर्मी होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। आप तो, मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही
0: तो
1: जाता।
0: ये जानकर
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो
1: अब
0: तो
1: तो
0: बस
1: साजन का ही
0: आ
1: इंतजार
0: ही
1: कर।
0: रहे हैं, सितंबर में बस आने
1: हाँ
0: ही वाले हैं, है ना? तो अब ये
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इंतजार का जो वक्त है
1: खत्म हो गया।
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है, तो चलिए सुनते
1: बिल्कुल
0: हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश न हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात, यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं?

पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला, पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो उठी।

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थी। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया, गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है, एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे। पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन।

शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए, वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले। हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है, बाढ़ ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर।

की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है। और चाचा, चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD। कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़ चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे। 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हर एक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहां तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी, चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई।

कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा, आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा, आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है।

0: बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था। वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा। गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे, बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है। हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूं। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो। बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहां की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूं तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा। याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?
1: जी।

0: चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता, जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराए में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ, आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसकी जड़ें हमारे संस्कारों में हैं, एक ऐसे अनुभव की जो किताबों में नहीं मिलता, और उन लोगों की जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे आज को बेहतर बनाने में लगा दी। जी हाँ दोस्तों, आज की दिनांक है 21 अगस्त और आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। फ्रेंड्स, जिंदगी एक चक्र है। आज हम युवा हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी सोचिए कि इस दौड़ में हमें रास्ता दिखाने वाले कौन थे? हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और परिवार के वे बुजुर्ग जिन्होंने अपने अनुभवों से हमें जीवन के मायने समझाए। दोस्तों, बुजुर्ग केवल उम्र का एक पड़ाव ही नहीं है, वे हमारे परिवार की जीवित स्मृति हैं। उनके पास बीते समय की कहानियाँ होती है, संघर्षों का अनुभव होता है और ज़िंदगी को समझने की वो दृष्टि होती है जो कई बार वर्षों की पढ़ाई के बाद भी हमें हासिल नहीं होती। लेकिन आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में एक सवाल हमारे सामने है, क्या हम अपने बुज़ुर्गों को उतना समय दे पा रहे हैं?

जितना वे हमारे लिए हमेशा देते रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों बिताने वाले हम युवा कई बार घर में बैठे अपने दादा दादी और माता पिता से कुछ मिनट बात करने का समय ही नहीं निकाल पाते। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम जान लेते हैं, लेकिन पास बैठे बुजुर्ग के दिन के बारे में पूछना हम भूल जाते हैं, है ना। यही वो जगह है जहाँ हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है दोस्तों। बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी का मतलब केवल उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करना नहीं होता, उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत अक्सर होती है उन्हें समय देना, सम्मान देना और उनके प्रति अपनापन जताना। फ्रेंड्स, कभी उनके पास बैठकर पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर आपके समय में ऐसा कौन होता था। यकीन मानिए, शायद आपको किसी किताब में न मिलने वाली कोई कहानी उनके जवाब में ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले उनके प्रति सम्मान रखना। बुज़ुर्गों की उम्र बढ़ने के साथ उनकी शारीरिक क्षमता कम हो सकती है, लेकिन उनका अनुभव और उनका महत्व कम बिल्कुल नहीं होता। उनके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, उनकी सोच हमारी पीढ़ी से अलग हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब अनादर कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उन्हें समय दें। आज संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बुजुर्गों को अकेलापन महसूस हो सकता है, तो युवा पीढ़ी का थोड़ा सा समय एक छोटी सी बातचीत और साथ बैठकर चाय पीना या फिर उनकी पुरानी यादें सुनना उनके लिए बेहद मायने रख सकता है। साथ ही दोस्तों, तकनीक की दुनिया से उन्हें भी आप जोड़िए। आज हम मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए ये चीज़ें कई बार मुश्किल हो सकती है। तो अगर आपके दादा दादी को वीडियो कॉल करना आप सिखा दें, उन्हें ऑनलाइन जानकारी ढूंढना बता दें या फिर मोबाइल के ज़रूरी फीचर्स समझा दें, तो हम उनके लिए दुनिया को थोड़ा और आसान बना सकते हैं, है कि नहीं। और साथ ही दोस्तों, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उम्र बढ़ने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच, दवाइयों की जानकारी, सुरक्षित वातावरण और भावनात्मक सहयोग भी ज़रूरी हो जाता है। तो आज की यूथ को चाहिए कि वे परिवार के बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को समझे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। लेकिन एक और बेहद ज़रूरी बात है, वो ये है कि उन्हें अपने डिसीजन में शामिल करना। दोस्तों, कई बार हम सोच लेते हैं कि अब इनकी उम्र हो गई है, इन्हें क्या ही पता होगा, लेकिन याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ इंसान के जीवन का अनुभव भी बढ़ता है। परिवार से जुड़े फैसलों में उनकी राय लेना उन्हें यह एहसास कराता है कि वो आज भी हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें ये भी समझना होगा कि बुज़ुर्गों की देखभाल केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है, और एक संवेदनशील समाज वही होता है जहां बच्चे सुरक्षित हों, युवा आगे बढ़ने के अवसर पाएं और बुज़ुर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सकें। और दोस्तों, युवाओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम युवा बदलाव की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हम तकनीक जानते हैं, नई सोच रखते हैं और समाज को नई दिशा देने का सामर्थ्य भी रखते हैं। इसीलिए हमें अपनी आधुनिक सोच को अपने संस्कारों से जोड़ना होगा। हमारे भारतीय संस्कारों में तो बुज़ुर्गों के सम्मान की परंपरा सदियों पुरानी है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव जैसे विचार हमें बताते हैं कि माता पिता और परिवार के प्रति सम्मान हमारे जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सम्मान केवल पैर छूने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान का अर्थ ये होता है कि आप उनकी बात सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनके समय और अनुभव को महत्व दें और उन्हें अकेला महसूस न होने दें। तो आज इस विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए समय ज़रूर निकालेंगे, उनकी बातें ध्यान से सुनेंगे और उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, तकनीक और बदलती दुनिया में उनकी मदद करेंगे, और सबसे ज़रूरी कि उन्हें ये महसूस बिल्कुल नहीं होने देंगे कि वे परिवार पर बोझ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस घर में बुज़ुर्गों की मुस्कान होती है वहाँ अनुभव का खजाना होता है। उनके पास बैठना समय की बर्बादी नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने का अवसर है। तो हम अपने भविष्य के लिए जैसे सपने देखते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे वर्तमान की नींव भी किसी ने अपने बीते कल में रखी थी। हमारे बुज़ुर्गों ने ही हमें चलना सिखाया, तो इसलिए अब हमारी बारी है कि हम उनके सफ़र को थोड़ा और आसान बनाएं। इसी के साथ आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान। राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
6: दोस्तों, परिवार सिर्फ कुछ लोगों का एक साथ रहना नहीं है, बल्कि परिवार वो जगह है जहां हमें रिश्तों की समझ मिलती है, संस्कार मिलते हैं और सबसे ज़रूरी अपनापन मिलता है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारे परिवारों का स्वरूप भी बदल रहा है कि नहीं? पहले जहां एक ही घर में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे साथ रहते थे, वहीं आज कई परिवार छोटे होते जा रहे हैं। पति पत्नी और उनके बच्चे यानी एकल परिवार आज शहरों में आम होते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर एकल परिवार आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? रोजगार के लिए शहरों की ओर बढ़ता पलायन, बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसर, बढ़ती महंगाई, निजी स्वतंत्रता की चाह और बदलती जीवन शैली, इन सभी कारणों ने संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों को बढ़ावा दिया है। फ्रेंड्स, एकल परिवार के अपने फायदे भी हैं। इसमें निर्णय लेना आसान होता है, माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं और परिवार अपनी सुविधा के अनुसार जीवन शैली तय कर सकता है, और साथ ही पति पत्नी को अपने करियर और व्यक्तिगत फैसलों में अधिक स्वतंत्रता भी मिलती है। लेकिन हर बदलाव के कुछ प्रभाव भी होते हैं, और सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है रिश्तों की दूरी में। जब परिवार छोटा होता है तो बच्चों का दादा दादी, नाना नानी और दूसरे रिश्तेदारों के साथ रोज का संपर्क कम हो सकता है, और ऐसे में बच्चों को परिवार की अलग अलग पीढ़ियों से मिलना, जो उनसे मिलने वाला अनुभव है और कहानियाँ कम सुनने को मिलती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे बच्चों के पास दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए इंटरनेट है, लेकिन कई बार अपने ही परिवार के किसी बुजुर्ग से बातचीत करने का समय उन्हें होता ही नहीं है। ज़रा सोचिए कि एक बच्चा अपने फ़ोन पर हज़ारों वीडियो देख सकता है, लेकिन अगर दादी से उनके बचपन की कहानी सुनने का समय नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कुछ

मूल खो रहे हैं। एकल परिवारों का एक और प्रभाव है दोस्तों, और वो है अकेलापन। ये सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चे पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, तो एक ही घर में रहने के बावजूद कई बार परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। पहले परिवार में बच्चे को किसी समस्या का समाधान कई लोगों से मिल जाता था। दादा दादी के अनुभव, चाचा चाची की सलाह और माता पिता का मार्गदर्शन एक बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने में परिवार की कई पीढ़ियाँ भूमिका निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ एकल परिवारों में माता पिता पर जिम्मेदारियाँ अधिक हो जाती है। बच्चे की पढ़ाई, स्वास्थ्य, उसकी नौकरी, घर और दूसरी ज़रूरतों को संभालना कई बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एकल परिवार गलत हैं और संयुक्त परिवार ही सही है। असल मुद्दा परिवार का आकार नहीं बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता होती है। अगर हम छोटे परिवार में रहते हुए भी अपने दादा दादी और दूसरे रिश्तेदारों से जुड़े रहें, त्योहारों और खास मौक़ों पर साथ में समय बिताएं, नियमित फ़ोन या वीडियो कॉल करें और बच्चों को परिवार की कहानियां और परंपराओं से जोड़ें, तो ये दूरियां कम की जा सकती है। आज तकनीक हमारे पास एक शानदार माध्यम है। वीडियो कॉल के जरिए बच्चे अपने दादा दादी से बात कर सकते हैं, परिवार के सदस्य दूर रहकर भी एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बने रह सकते हैं। और शायद हमें एक और बदलाव करना होगा, वो ये कि परिवार के साथ आपको समय बिताना होगा, उसको भी अपनी प्राथमिकता आपको बनाना होगा, क्योंकि परिवार सिर्फ सोशल मीडिया ग्रुप का नाम नहीं है। परिवार वो है जहाँ कोई हमारे चुप रहने पर भी पूछता है कि क्या हुआ। परिवार वो होता है जहाँ हमारी सफलता पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है उन्हें, और हमारी परेशानी में सबसे पहले कोई हमारे साथ खड़ा होता है। तो इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि बदलते समय के साथ परिवार का स्वरूप भी बदलना स्वाभाविक है। एकल परिवार आधुनिक जीवन की ज़रूरतों का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि आधुनिकता के साथ रिश्ते पीछे न छूट जाएं। हम छोटे घरों में रह सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में रिश्तों के लिए जगह बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि संयुक्त परिवार में रहें या एकल परिवार में, हम अपने रिश्तों को ज़रूर समय देंगे और बुज़ुर्गों से बातें करेंगे। तो इसी के साथ आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिनेमा इस हफ्ते सेगमेंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की उस खूबसूरत दुनिया की, जो अपनी भाषा, संस्कृति और मिट्टी की खुशबू के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। वो है हमारी क्षेत्रीय सिनेमा। भारत में सिनेमा सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं है। देश की अलग अलग भाषाएं और बोलियां अपनी कहानियां और अपनी संस्कृति पर्दे पर लेकर आ रही है। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे राजस्थानी सिनेमा की बदलती तस्वीर की। दोस्तों, राजस्थान अपनी लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य परंपरा और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। राजस्थानी फिल्मों में लंबे समय से गांव, परिवार, लोक जीवन दिखाई देता रहा है। अब नई पीढ़ी के फिल्मकार इन परंपरागत विषयों के साथ साथ युवाओं, शिक्षा, रोजगार, बदलते रिश्तों और सामाजिक बदलाव जैसे विषयों को भी कहानियों में शामिल कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने स्थानीय कलाकारों और छोटी फिल्मों को नए दर्शकों तक पहुँचने का मौका दिया है। इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन नगमा।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, अपने बुजुर्गों के प्रति हमेशा सम्मान रखिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 बजाते हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। जी हाँ, महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त बबीता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, घर के बुजुर्गों को परिवार की नींव कहा जाता है। बुजुर्गों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनसे सलाह लेनी चाहिए। उनका स्नेह और प्यार अनमोल है। हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो दिन है जब पूरी दुनिया बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक साथ खड़ी होती है। इस विशेष दिन पर वरिष्ठ नागरिकों के से संबंधित हर समस्या पर चर्चा की जाती है, उनके अनुभव साझा किए जाते हैं। ये अवसर युवाओं को उनकी सेवाओं, उपलब्धियों और परिवार देश के प्रति समर्पण के लिए उनकी सराहना करने का अवसर भी देता है। सखियों, इसके इतिहास के बारे में बात करें तो साल 1988 में पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगन ने सबसे पहले वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने औपचारिक रूप से विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना 19 अगस्त 1988 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। इसके 2 साल बाद पहला विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन का पहला उत्सव 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तारीख को बदलकर 21 अगस्त की और तभी से पूरी दुनिया में 21 अगस्त को यानी आज के दिन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया

जाता है। से क्यों वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन में पिछले अनुभवों से ज्ञान लेकर आते हैं जो युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाने में मदद कर सकता है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और तथ्यों को आगे बढ़ाकर संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं, जबकि उनके ज्ञान और अनुभव का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस उन नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है जो उनकी मदद कर सकती है और उनके जीवन को आसान बना सकती है। इस दिन उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई जाती है। सखियों, इस दिन को मनाने से एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं है, बल्कि जीवन का एक ऐसा चरण है जिसे गरिमा के साथ जीना चाहिए। ये उन निर्वाधक जांचों को निर्धारित करने का एक स्वाभाविक अवसर भी प्रदान करता है, जिन्हें कई वरिष्ठ नागरिक अन्यथा अनिश्चित काल के लिए टाल देते हैं और परिवारों के भीतर देखभाल योजना, गतिशीलता, सहायता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के बारे में खुलकर बातचीत करने का भी अवसर देता है। सखियों, बातें तो हम आपसे और भी करेंगे, फिलहाल आपको लिए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी

0: फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: सखियों, हर किसी को एक सुंदर, साफ और निखरी त्वचा चाहिए, मगर त्वचा पर किसी न किसी तरह की समस्या आती रहती है। धूल, मिट्टी, प्रदूषण और आजकल के लाइफस्टाइल के कारण हमें स्किन प्रॉब्लम से बच नहीं सकते, इसलिए इनका इलाज करने के बजाय हम इन्हें मेकअप की लेयर से ढकने की कोशिश करते हैं। सखियों, यदि आपके चेहरे पर भी खुले हुए रोम छिद्र यानी ओपन पोर्स दिखाई दे रहे हैं तो यकीनन कोई मेकअप भी इन्हें नहीं छुपा सकता। ये जिद्दी पोर्स यदि एक बार चेहरे पर बन जाए तो जाने का नाम नहीं लेते, मगर चिंता ना करें क्योंकि सखियों हमारे पास ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हम आपको चेहरे के खुले रोम छिद्रों को कवर करने में मदद करेंगे। यकीन कीजिए, जिस समस्या का इलाज केमिकल्स नहीं कर सकते उनके लिए घरेलू नुस्खे सबसे फायदेमंद होते हैं। तो सखियों, सबसे पहले देखते हैं कि ओपन पोर्स क्या है। त्वचा पर छोटे गड्ढे जैसे छिद्र होते हैं जो तैलीय त्वचा के संयोजन वाले लोगों में दिखाई देते हैं। आपकी त्वचा पर खुले रोम छिद्र होने से आपका चेहरा सुस्त और पुराना दिखाई देता है। रोम छिद्र भी गहरी गंदगी जमा करते हैं और बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद होने से पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और सीबम का अधिक उत्पादन जैसे जटिलताएं होती है। त्वचा के जलयोजन और विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए छिद्र महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े हुए छिद्र चिंता का कारण हो सकते हैं। तो सखियों, चेहरे पर क्यों नजर आने लगते हैं ओपन पोर्स? यूवी रेंज, सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा के कोलेजन को नुकसान होता है और लोच कम हो जाती है, जिसके कारण ये पोर्स दिखाई देते हैं। जेनेटिक्स, बड़े हुए रोम छिद्र का प्रमुख कारण हमारी जेनेटिक्स भी हो सकती है। एजिंग, समय के साथ त्वचा की कोशिकाएं कोलेजन और इलास्टिन खो देती है जो आपकी त्वचा को फैलाता है और छिद्र दिखाई देने लगते हैं। अत्यधिक तेल स्त्राव, वसामय ग्रंथियों में अत्यधिक तेल स्त्राव के कारण रोम छिद्र खुले हो जाते हैं। स्वच्छता, यदि आप नियमित रूप से अपना चेहरा नहीं धोती हैं तो आप ओपन पोर्स से पीड़ित हो सकती हैं। सखियों, कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप ओपन पोर्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बर्फ के टुकड़े, चेहरे को साफ करने के बाद बर्फ के टुकड़ों को एक साफ कपड़े में लपेट कर खुले रोम छिद्रों वाली जगह पर कुछ देर के लिए लगाएं। ये छिद्रों को बंद करने में मदद करते हैं। मुल्तानी मिट्टी न सिर्फ पिंपल्स को कम करती है बल्कि रोम छिद्रों को कम करने में भी मददगार करती है। ये खुले रोम छिद्रों से तेल और गंदगी को सोखने में बहुत अच्छी होती है, साथ ही ये मृत त्वचा कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करने में मदद करती है। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करने से आपके ओपन पोर्स टाइट हो सकते हैं। गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए आपको बस 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा पानी चाहिए। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। जब ये सूख जाए तो अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। दही, ये त्वचा के सामान्य पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसे बेसन के साथ मिलाएं, चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर बाद साफ पानी से धो लें। ये मृत कोशिकाओं की त्वचा को साफ करता है और छिद्रों को तेल से मुक्त रखता है। त्वचा में निखार लाता है और टेनिंग को भी दूर करता है। नींबू का रस, एस्ट्रीजेंट रोम छिद्रों को बंद करने में मदद करते हैं। नींबू के रस का कसोला प्रभाव होता है। गुलाब जल और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सखियों, 10 मिनट बाद सादे पानी से चेहरे को धो लें। गुलाब जल एक प्राकृतिक स्किन टॉनिक है जो रोम छिद्रों को भी बंद कर सकता है। सखियों, ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप अपना कर आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सखियों, प्राचीन काल से ही पृथ्वी और पृथ्वी की समान धर्मा स्त्री ने खुद को पृथ्वी और अन्य शोषित जातियों नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। प्राकृतिक संसाधनों, वन, मिट्टी और जल से महिलाओं का सीधा और गहरा संबंध है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को प्रकृति का संरक्षक माना गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही है। हमारे देश में महिलाओं ने अपनी जमीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है। महिलाएं

अपने घर की हर चीज के उपयोग का रास्ता खोज लेती है। मसलन सब्जी के डंठल की हो या फटे पुराने कपड़े की कथरी। जब हम भारतीय परंपराओं और अपने आदिवासी जीवन को देखते हैं जिसका आधार प्रकृति है, इसमें दूब घास से लेकर बाग तक को बचाने के उपाय हैं। सखियों, हमारी पुरखनियों ने सम्मान दिया तो प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। बहानेपन के साथ महिलाएं पृथ्वी का ख्याल रखती रहीं। इस ग्रह के संसाधनों के उपभोग के समय खुद के विषय में स्त्री ये सोचती है कि खुद और पृथ्वी पर लोगों को निर्वाध नियंत्रण पर अंकुश लगे। इस बीच अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में दूसरों की देखभाल करने के मामलों में उच्च स्तर का समाजीकरण होता है। इस वजह से उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता की संभावना बढ़ जाती है। आज भी अधिकांश महिलाएं घर के कामों, कचरा निपटान, घरेलू खरीदारी, कपड़े धोने की जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए धरती रक्षक अधिकांश उत्पाद महिला उपभोक्ता केंद्रित होते हैं। सखियों, फिर सभ्यता के विकास ने कालक्रम के में पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं ने व्रत व त्योहार से जोड़ दिया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत व त्योहार के अवसरों पर या यों ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों और पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों जैसे पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, आम आदि वृक्षों तथा अनेक पुष्पों को शामिल कर उनका संरक्षण करना है। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति भी संरक्षण की भावना महिलाओं के में प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे गंगा पूजन, कुआ पूजन, तालाब पूजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने के प्रति महिलाएं सदा से अग्रणी रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती चली आई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्राकृतिक संसाधनों या वन मिट्टी जल में महिलाओं का सीधा एवं गहरा संबंध रहा है। यही कारण है कि महिलाओं को ही इसका संरक्षक माना गया है। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण, खास तौर से वन संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है और महिलाएं इसके प्रति जागरूक भी हैं। सखियों, बातों का सिलसिला तो आगे जारी रहेगा। अब आपको ले चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्यों पेड़ पौधे इंसान के लिए उतने ही जरूरी है जितने हवा और पानी, लेकिन इंसानी बस्तियां इन्हें काटकर ही बसाई जाती है। इंसान इसकी भारी कीमत चुका भी रहा है, उसे प्रदूषण के साथ जीना पड़ रहा है, अनगिनत बीमारियां उसके गले पड़ रही है, लेकिन अब इंसान को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नए पेड़ पौधे लगाकर वो अब कुदरत का कर्ज उतार रहा है। पर्यावरण को संरक्षित रखने में पेड़ पौधों का अहम रोल होता है। पेड़ पौधे की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधों जीवन को बचाने में ही बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अहम रोल अदा करते हैं। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधे मात्र वायु प्रदूषण को ही नहीं बल्कि हानिकारक रसायनों को छानकर जल को भी साफ करते हैं। जितने अधिक पेड़ होंगे पर्यावरण भी उतना शुद्ध रहेगा। आजकल लोगों को वायु प्रदूषण के साथ कई प्रकार के सांस एवं अन्य रोगों से पीड़ित होना पड़ रहा है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि घर के साथ साथ अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं। सखियों, इसी के साथ हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62

1,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। प्रोग्राम का पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम फ़कीरा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पल दो पल का शायर।
3: आवाज मुकेश की है और फिल्म का नाम कभी कभी। प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कालूराम प्रजापति का गाया यह लोकगीत।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत करीम खां खेजड़ला के स्वर में गौरबंद।

करीम खां खेजड़ला के गए इस लोकगीत के साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ये बिल सदन में प्रस्तुत किया। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोकने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के बीच मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की, वहीं भाजपा विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर सदन में हंगामा किया। इससे कार्यवाही बाधित हुई और 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रभावी बनाने की जरूरत है। आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये समय उत्तरदायित्व से भरे हुए पर्यटन पर विचार करने का भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास की भी जरूरत है।
1: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म।

0: ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया। और चौथा तट टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन, ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रेवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जयपुर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी बनी। श्री शेखावत ने बताया कि आने वाले समय में इस घोषणा पत्र में साझा किए गए विषयों से पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे, इससे जयपुर को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक से पहले जयपुर में कल और परसों ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। इसमें एआई, कौशल विकास और पर्यटकों के लिए सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उन युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर खुशी हुई जिन्होंने एक नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों की पालना के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की घोषणा से पहले तबादले और पोस्टिंग के लिए जारी किए गए आदेशों का क्रियान्वयन हर हाल में 24 अगस्त तक सुनिश्चित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भर्तियों को लेकर कहा है कि यदि चुनाव घोषणा से पहले नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं तो खाली पदों पर पदस्थापन किया जा सकता है। आयोग ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने मतदान कार्मिकों का पहला रेंडमाइजेशन किया। इस दौरान नगर निकाय आम चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों का रेंडमाइजेशन किया गया। ये प्रक्रिया निर्धारित नियमों और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले साल के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए ये फैसला दिया। पीठ ने कहा है कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष

0: की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पीएम श्री विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार 2 की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार आया है और डिजिटल डैशबोर्ड तथा स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से तकनीक का प्रभावी समावेश हुआ है।
1: सारे पीएम श्री स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियालो राजस्थान में भाग लिया है, विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है, रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशंस हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है।
0: वेबिनार में प्रदेश भर के चयनित पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों और जिला तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग की राष्ट्रीय सूची में प्रदेश के 11 विद्यालयों ने स्थान हासिल किया है। इनमें 3 पीएम श्री विद्यालय शामिल हैं। राज्य में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 प्रतिष्ठानों पर सर्वे में लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की कर अनियमितताएं उजागर की है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं ने कुल 2,03,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि स्वेच्छा से जमा कराई। इन कार्रवाईयों में जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर स्थित प्रतिष्ठान शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरणों में जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल वास्तविक और वैध लेनदेन के आधार पर आईटीसी का दावा करें और जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पूरा पालन सुनिश्चित करें। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत झुंझुनू मेडिकल कॉलेज समसपुर परिसर में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक करना रहा। मेडिकल कॉलेज, वन विभाग, विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में करीब 1,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण में भाग लिया। कोटपुतली बहरोड जिले की श्रीमती पाना देवी मोरिज वाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में अंगदान के महत्व का संदेश प्रसारित करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर परिषद नागौर तथा नगर पालिका बासनी, जायल, कुचेरा और मोडवा में, जबकि दूसरे चरण में मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, डेगाना और रियामबड़ी में चुनाव होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। सदस्य

0: पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को की जाएगी और नाम वापसी 3 सितंबर को होगी। चुनाव चिन्ह 4 सितंबर को आवंटित किए जाएंगे। जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस धारियों को अपने हथियार 21 अगस्त तक संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित श्रेणियों में शामिल बैंक सुरक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस और होमगार्ड को इससे छूट दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिले के 9 निकायों के 285 वार्डों के आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है। कुल 285 वार्डों में 28 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जाति महिला, 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 60 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। 126 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। वहीं पंचायती राज चुनाव के लिए नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों की जिला प्रमुख की सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर नागौर खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह गरिमा पूर्वक मनाया गया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। विद्यार्थियों ने व्यायाम, योगासन, लेजियम और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिला पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 56 प्रतिभाओं और कार्मिकों को प्रशंसा पत्र और पारितोषिक दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली भी निकाली गई। कलेक्ट्रेट से गांधी चौक तक निकाली गई रैली में अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों के जवान, एनसीसी कैडेट, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। बीते महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना के तिलानेश गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने किसानों से खेती, उपज और सिंचाई की जानकारी ली। महिलाओं के साथ खेत में निराई गुड़ाई में भी हाथ आजमाया। बुजुर्गों से उनकी समस्याओं और युवाओं से शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शिव सागर तालाब की पाल पर पौधरोपण किया। उन्होंने गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र, सड़क निर्माण और तालाब के सौंदर्यकरण से जुड़े कामों की घोषणाएं भी की। खरीफ फसलों में सूत्रकृमि की समस्या को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है। मूंग, ग्वार, बाजरा और ज्वार की फसलों में पौधों की बढ़वार रुकने, पत्तियां पीली पड़ने और जड़ों में गांठें बनने जैसे लक्षण दिखाई देने पर जांच की सलाह दी गई है। किसानों से बिना विशेषज्ञ की सलाह के कीटनाशक या निमेटिसाइड का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। विद्यालयों में विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और शिकायत के विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नागौर जिले में 290,136 वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ मिला है। इसी तरह नागौर जिले में चुनावी तैयारियों के साथ जनकल्याण, कृषि जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। विधानसभा में विपक्ष रा हंगामा बीच समान नागरिक संहिता बिल पेश, सदन री कार्रवाई अनिश्चितकाल सारू टली। जयपुर में ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग भी। सैर सपाटा रा हलका में भेड़ी रणनीति और मदद बधावण माथे एक राय बनी। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षावां सारू 3 साल री वकालत री जरूरत न घटार 1 साल की नी। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पीएमसी विद्यालय राज्य में चोखी और नुआ जमाना री भणाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा रूप में खास पहचान बनाई। समाचार सगे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसी

0: सी बिल पेश की। नो बिल पेश में पाछे कांग्रेस रा विधायक सदन री कार्रवाई में शामिल नहीं भया। इनु पहली सदन री कार्रवाई शुरू हुए ताई विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली कांग्रेस रा विधायक ने विधानसभा रा खास दरूजा माथे रोकण रो मुद्दो उठार ई माथे चर्चा करावण री मांग की नी। स्पीकर वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल बीचे ओ मुद्दो उठावण री मंजूरी नी दीनी। ई पाछे कांग्रेस रा विधायक वेल माय नारा लगावण सागे हंगामो करण लाग्या। दूजी कानी भाजपा रा विधायक कांग्रेस रे खिलाफ नारा लगाया। इनु कामकाज में अड़चन आई और सदन री कार्रवाई दो दफा टालनी पड़ी। कार्रवाई ओजू शुरू हुए वनपनाई कांग्रेस रा विधायक रो हंगामो चालतो रहो जिनने देखता था का स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन रा छठा सत्र री कार्रवाई बेमियादी भगत सारू टाल दीनी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा बढ़ता उपयोग न ध्यान रखता थका सैर सपाटा रा हलका में आई इनने असरदार तरीका काम लेवन री जरूरत है। वह जयपुर में ब्रिक्स देशा रा पर्यटन मंत्रिया री मीटिंग पूरी हुआ पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। शेखावत कहो कि मौजूदा दौर जिम्मेदारियों भरिया सैर सपाटा माथे विचार करण रो है। वे कहो कि लाडला 10 साल में भारत में सैलानिया री तादाद 3 गुना बधी है। पर्यटन मंत्री कहो कि सैर सपाटा न ध्यान रखता थका ई हल्का माई कौशल विकास री जरूरत है।
1: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया। और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर्स सीमलेसली ट्रेवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
0: केंद्रीय मंत्री बतायो कि ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों ने मीटिंग में जयपुर घोषणा पत्र तैयार करी चियो। मीटिंग में ब्रिक्स देशों बीच सैर सपाटा रा हलका में भेड़ी रणनीति और एक दूजारी मदद बधावन रे बारा में आई एक राय बनी। श्री शेखावत बतायो कि आवता भगत में आई घोषणा पत्र में साझा करी चिया मुद्दाओं सैर सपाटा रा हलका में नुआ आयाम बनेला जाऊं जयपुर ने बत्तो फायदो मिलेला। ध्यान जोग है कि ब्रिक्स देशों रा पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग पहली काल और 19 अगस्त ने जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह री मीटिंग रखी जी ही जिनमें AI कौशल विकास और सैलानिया सारू सुविधा में बढ़ोतरी समेत कई खास मुद्दा माथे चर्चा करी जी। दूजी कानी पुणे में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया री सदारत में ब्रिक्स देशों रा संचार मंत्रियों की मीटिंग रखी जी। इनमें ब्रिक्स रा सदस्य देशों रा संचार मंत्री सूचना और संचार प्रौद्योगिकी डिजिटल बदलाव और नुआ कामा रा बारा माय सहयोग मजबूत करण माथे विचार कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष हलकाओं जुड़िया 20 स्टार्टअप रा मुख्य कार्यकारी अधिकारियां और स्टार्टअप शुरू करण वाला सागे बातचीत कीनी। ये मौके वे कहो कि देश रो अंतरिक्ष हलको वैश्विक प्रतिभा कंपनियां और निवेश खींचण रो केंद्र बन सके है। ये पाछे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि वाने नौजवान कारोबारियां और नुआ काम करण वालों मिलर खुशी भी जो एक नुआ और चुनौती वाला हलका माए ध्यान जोग हिम्मत रो दर्शाव की नो। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव रा ऐलान पहले करी जिया तबादला और पोस्टिंग सारू जारी हुक्म री पालना 24 अगस्त तय करावन सारू कहो है। राज्य निर्वाचन आयोग कहो कि चुनाव रा ऐलान पहली नियुक्ति रा हुक्म जारी वेवन री सूरत माए रीता ओहदा माथे पदस्थापन करो जा सके है। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव 2026 री तैयारियां चल रही है। आज चित्तौड़गढ़ माए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू चुनाव ड्यूटी वाला कर्मचारियों रो पहलो रेंडमाइजेशन कीनो। इन दौरान नगर निकाय आम चुनाव सारू बनाई जी पोलिंग पार्टियां रा पीठासीन अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियां रो रेंडमाइजेशन करी जियो। जालौर माई मास्टर ट्रेनर री सिखावण रो कार्यक्रम राखी जियो। ਪਾਰਲੀਮਾਏ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮਾਏ ਨਾਮ ਮੰਡਾਵਣ ਸਮੇਤ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਾਰੂ

0: मतदान केंद्रा मथे खास शिविर लगाया जा रहा है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तरी न्यायिक सेवा परीक्षा देवन सारू एलएलबी डिग्री हासिल करन वाला बाबत जरूरी 3 साल री वकालत रा अनुभव री जरूरत न घटार 1 साल कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ए जी मसीह और के विनोद चंद्रन रिपीट ओ फैसलो दिनो। पीठ कहो कि 25 मई 2025 हूँ 31 मार्च 2027 पीछे भर्तियां सारू निकाली जी न्यायिक सेवा परीक्षावां देवन सारू उम्मीदवार पहली रा अनुभव वगैरह ही पात्र भैला। हालांकि आ परीक्षावां माए चुनी चिया उम्मीदवारा ने नियुक्ति सरू माए प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियां रा तौरू फैला वान न्यायिक अकादमी माए 1 साल री सिखावन लिया पाछे 1 साल रो व्यवहारिक प्रशिक्षण लेवनो फैला। ध्यानजोग है कि सुप्रीम कोर्ट लाडला साल 20 मई ने एलएलबी करोड़ा नुआ लोगों ने प्रवेश तरी न्यायिक सेवा परीक्षा देवन रोक दीना हा और इन सारू कम 3 साल री वकालत रा जरूरी अनुभव री व्यवस्था दीनी ही। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि पीएमसी स्कूल राज्य में बेहतर क्वालिटी और नुआ जमाना री भणाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा तौर पहचान बना रहा है। वे आज जयपुर पीएमसी स्कूल रा संस्था प्रधान सागे राज्य स्तरीय वेबिनार माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि आ स्कूल माए नाम मंडावन वाला विद्यार्थियों री तादाद बधी है। इम्तिहान रा नतीजा माए गुणात्मक सुधार आयो है। वह हर महीना 10 संस्था प्रधान सागे बातचीत करण और सबो चोखा अभ्यासा ने पूरा प्रदेश माए लागू करण रा हुकम ही दीना।
1: सारे पीएमसी स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया है। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियाणा राजस्थान में भाग लिया है। विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है, रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशन हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है।
0: वेबिनार में प्रदेश भर चुनी जी पीएमसी स्कूल रा संस्था प्रधान और जिला और ब्लॉक स्तर रा शिक्षा अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीकों शामिल थिया। ध्यान जोग है कि शिक्षा मंत्रालय कानून जारी करी जी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग री राष्ट्रीय सूची में प्रदेश 11 स्कूल शामिल है। चमाए 3 पीएमसी स्कूल ही भेड़ा है। जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर माए कारोबारी प्रतिष्ठान माथे करी जी जीएसटी सर्वेरी कार्रवाई माए 5 करोड़ रुपये बत्ती टैक्स गड़बड़ियां उजागर हुई है। कार्रवाई रे दौरान संबंधित करदाता 2,03,00,000 रुपये बत्ती रकम जमा कराई। जीएसटी विभाग टैक्स देवन वालों केवल असल और कानूनी लेन देन रा आधार इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC रो दावो करण और GST कानून री पालना तय करण री अरज कीनी है। हरियाणा राजस्थान अभियान रा तहत झुंझुनूरा मेडिकल कॉलेज परिसर माए वन महोत्सव कार्यक्रम राखी जियो। मेडिकल कॉलेज, वन विभाग, न्यारी न्यारी स्कूल और सामाजिक संस्थावां री ओर उमिलर राखी जिया कार्यक्रम रे दौरान कॉलेज परिसर माए करीब 1,000 पौधा रोपी जिया। कोटपुतली बहरोडरा पाना देवी मुरीजवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान रा तहत पोस्टर, निबंध और नारा लिखण री होड़ा राखी ची। आरो मकसद टाबरिया माए अंगदान रा प्रति जाग जगावण और समाज माए अंगदान रा महत्व रो संदेश न बतावणो हो। सवाई माधोपुर जिला में रणथंभौर बाघ परियोजना रा दूमोदा गांव में तेंदुआ रा हमला रे कारण एक टाबर री मौत पाछे उपजो तनाव गांव वाला और वन प्रशासन बीच सहमति पाछे खत्म फेंक्यो है। ई पाछे लाश रो पोस्टमार्टम कर रवाना परिवार वाला ने सौंपती री जी। उप वन संरक्षक प्रथम मानस सिंह बतायो कि मरण वाला रा परिवार वाला ने संविदा रा आधार नौकरी देवन और नियम रे मुजब उचित मुआवजो देवन रे बारा माए सहमति बनी है। तेंदुआ ने पकड़ बासारू वन विभाग की टीमा खास ऑपरेशन चला रही है। नई दिल्ली में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत री त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्री जोड़ी महिला डबल्स होड़ रा सेमीफाइनल में पूग की है। भारत री जोड़ी पहला

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाला सगला बाया बाया और नन्ना टाबरा ने आपके मनोज भाई का घना हेतों घना गोडू राम राम। देखो भाया चौपाल में तो राम राम तो कराई हाँ, पर आप की पशुपालन संबंधी खेतीबाड़ी संबंधी और कई नई नई जानकारियाँ खेती और पशुपालन की वजह की आप एक बार हम बातचीत करा करा। तो आज आप विशेष रूप में बातचीत कर रहे हैं पशुपालन लाभकारी व्यवसाय। आप सब किसान भाई जाना यहाँ कि बिना पशुपालन खेती अधूरी है और खेती करना पशुपालन नहीं करना तो खेती भी अधूरी है, पशुपालन करना खेती नहीं करना तो पशुपालन भी अधूरा है। परंतु कई भाईयान का भी है जो खाली पशुपालन भी करे, कई भाईयान का जो खाली खेती भी करे, परंतु पशुपालन करण आपने खेती अगर साथ कर रहे हैं तो पशु तो आप पाला जगह पड़ा यहाँ पेंको अपन गोबर की प्राप्ति हुए तो गोबर ने सुखा पुरो खाद बना सड़क तो भी काम आवे, खेत के मायने खाद मुफ्त की मिल जाए फ्री की मिल जाए, या फिर कोई खाडो खोद पुरो गोबर के मायने गोबर भी खाडा में नाग बोगना पानी डाल सड़ा आए दें सड़ा पड़े भी भाई लोग बिन पे सुखार पाचे नाखें खेत में छिड़कें तो एक ऑर्गेनिक खेती हुए जैविक खेती हुए। और जैविक खेती करना था मैंने स्वास्थ्यप्रद अनाज की प्राप्ति हुई और भले ही एक दो साल पैदावार थोड़ी कम हुए पर आगे जा रहा जाए तो गोबर की प्राप्ति भी अपन पशुपालन में हुई और खाद का पैसा बच जाए। इसके साथ साथ पशुपालन अगर आप करा तो दूध की प्राप्ति हुए चाहे गोवंश हो चाहे भैंस वंश हो चाहे बकरी हो दूध की प्राप्ति हुई तो आप बड़ी संख्या में अगर रखा तो खेती के साथ एक छोटो चोखो व्यवसाय हो जाए दूध डेयरी में देवा तो भी अपना आय को साधन बढ़े और गाँव शहर तक लापरार आप घर घर सप्लाई कर दें या कोई शहर गवाए डेयरी खुलेड़िए बट लार देवा तो आप चौके आय की प्राप्ति कर सका। इसके अलावा गाय और भैंस के दूध हूँ आप अगर घी की प्राप्ति करा घी बनावा तो शुद्ध घी

0: एक तो बाजार में घी आवे कंपनियां का जिका जिका आप घरे दूध जमार दही जमार घी की प्राप्ति करा पिलाना वित्तीय शुद्धता आधारित दूसरा घी नहीं हो सके तो आप घी की प्राप्ति भी पशुपालन कर सका। और जिका ब्रांडेड कंपनियां का घी आवे बैंकों आप शुद्ध घी अगर डेयरी में या शहर में लार या गाँव में आप आस पड़ोसिया में घर में दे कोई जगह पशुपालन नहीं है तो आप घी बेच फरार भी चोखी आय की प्राप्ति कर सका। चोखो आप भी कोई यान को ऐसी टाइप आप बोला एयर कंडीशन कोई रूम बनवा ला और वे आजकल फ्रिज आया करें फ्रिज लिया भी मैं आप मक्खन रखा छाछ रखा दही रखा और गोवंश जी का भी दूध की प्राप्ति हुए वे राख अगर आप ऑन रोड माते कोई दुकान ले फिर पशुपालन के साथ है दूध दही घी मक्खन बेच परार भी आप चौकी आय की प्राप्ति कर सका। परंतु पहली बात आ है कि पशुपालन करणु पहले आप ध्यान रखा पशु चौकी नस्ल का लावा बढ़िया नस्ल का हुए चाहे गाय हुए चाहे भैंस हुए चाहे बकरी हुए जिको देसी हुए देसी गाय हुई दूध है जो अपना लाभकारी हुई भले ही थोड़ा कम हुए बिका भाव भी अपन अच्छा मिल जाए। तो बातचीत तो अपन और करा पहले एक सोना सूचना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: तो अब बात करता है पशुपालन लाभकारी व्यवसाय। पशुपालन तो देखो लाभकारी है ही, आप सब जाना। गाय को अगर आप गौमूत्र इकट्ठे करा बीको आप गौमूत्र आप छिड़काव करा खेती बाड़ी के मायने खेती की फसल माते तो कई रोग है जगह स्वतः ही दूर हो जाए। और खाद के मायने भी पानी की जगह गौमूत्र मिलावा, पानी के साथ गौमूत्र मिला खाद ने अपन लेकर सड़ापरी तैयार करा तो वह फसल भी अपन वास्ते बहुत बढ़िया पैदा हुए। और पशुओं के जिको गोबर हुए भी वहाँ पर थेपड़िया था अपा तो घर के मायने बलिताओ गाम आवे तो वो भी अपा ये खर्चो बचे। मतलब किसान और पशुपालक है जिको आपको घर को खर्चो आज की पढ़ी लिखी भाषा में कहवा जीरो बजट में चला सके और कुछ पैसा भी बचा सके। तो आप पशुपालन और खेती दोनों करा तो आप लाभ में ही रहे। पशुपालन वालों जी को खेती के अलावा अलग लाभ कमा ले जान मान लो बारह बरसात लंबी खींच की सपोज करो और बरसात कुछ दिन नहीं आए तो फसल खराब हो जाए तो बिकी भरपाई तो गायटा आप कर रहा है या नहीं कर रहा। पर पशुपालन साथ है तो दूध की पूर्ति घी की पूर्ति कर पर आप पाऊँ व्यवसाय ने अच्छी तरह चला सका। और भी बातचीत करा लेवा एक ब्रेक।
4: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो आप बातचीत करता पशुपालन लाभकारी व्यवसाय, तो पशुपालन वैसे आप गाय, भैंस, बकरी एक साथ साथ आप ऊँट भी पालना, वो भी एक पशु ही है। यातायात के साधन में काम आवे, वजन भार ढोने में काम आवे, बैल रखे खेती में काम आवे, कोई यातायात साधन है सामान एक जगह दूसरी जगह ले जाने में काम आवे, तो कुल मिलाकर पशुपालन आप करा तो पशुपालन में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आप तो बातचीत कराएं, परंतु आज मैं एक नागौर की सैनिक कॉलोनी है बट जगन्नाथ जी भाई है जिका पंचकव्य बनावे और बहुत आपको आजीविका चलावे और गाय की सेवा भी करें। मैं की बातचीत है जी वहाँ तक करा भूखती।
3: देखो भैया, टाइम टाइम सारू किसानों पशु पालका हूँ बातचीत करने वास्ते। आज मैं नागौर शहर में सैनिक कॉलोनी है बट एक भाई आपके 2-3 प्लॉट की जगह मैंने एक गौशाला बनाई है, पशुशाला बनाई है और पंचगव्य निर्माण भी करे। ए भाई हूँ बातचीत करा। राम राम सा।
4: राम राम सा।
3: काय नाम है सा ताको?
4: जगन्नाथ है।
3: जगन्नाथ जी, बहुत बढ़िया बात है सा, ताकि गौशाला तो बहुत बढ़िया है और विकलांग या गाय जी था ऐसा खड़ी है सेवा भावों थे गौ सेवा कर रही हो। कितनी गाय था ना?
4: छोटे मोटे 17 है सर।
3: 17
4: गोवंश है।
3: गोवंश
4: घरेलू गोवंश ही है, दान के हिसाब से कोई नहीं चलाते अपन, और ये जो पंचगव्य उत्पाद बनाते हैं उससे ये गौ माता का खर्चा निकलता है और वो मेरे को भी पाल रही है।
3: बहुत अच्छी बात है, आपको गौ पाल रही है, माँ ना, माँ तो पालेगी।
4: सृष्टि में गौ माता कोई नहीं पालता, गौ माता से ही पूरी सृष्टि पल रही है। जैसे अनाज है, अनाज में अगर खेत में अगर गोबर नहीं दोगे आप, केमिकल दोगे तो बीमारियां बढ़ेगी। एक घर में गौ माता है, आपके पास खेत है तो उसमें गोबर को तैयार करके गौमूत्र गोबर औषधि बना लो खेती के लिए, और वो धान खाओगे आप अनाज तो कदी बीमार कौन वो। और जगह अगर गाय है वो डॉक्टर का नाव कौन है,
3: क्यों मतलब है गाय की सेवा करा, गाय के नजदीक रहे वहाँ तो अपन शरीर भी स्वस्थ रहे। हाँ। और भैंस को थोड़ो दूध है जी अपन वास्ते पौष्टिकता कम दे उन्होंने है।
4: भैंस रो दूध मेहनत तो बहुत ज्यादा करे, जकेर काम रो है।
3: देखो
4: पहलवानी करे वो भैंस रो दूध रो काम रो है, गाय को दूध माँ के दूध रे बाद में गाय रो दूध बतायो।
3: बहुत अच्छी बात,
4: गाय दूध ने अमृत दे रही है। और हम पर गौ माता भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गौ माता है जो की वो अगर 2 लीटर देवे तो वो अमृत है।
3: क्यों मतलब है थे जी हो कहीं पशुपालन दूध वास्ते नहीं कर रहा हूँ और पशुओं की सेवा भाव करो और साथ है गो उत्पाद जी की चीज बने बैंको थे उपयोग कर प्रार आपको आजीविका चला रहा।
4: पंचगव्य हूँ मैं, करीब 40 आइटम बनाऊ जो का शरीर में कोई भी बीमारी हुआ तो वह ठीक हो जाए। अलग अलग प्रकार है, एक गेहूं दवाई बने पंचगव्य घर प्लस जड़ी बूटी है, पांचों चीज गोबर गौमूत्र दूध दही घी डालर साथ जड़ी बूटी और मिश्रण हुए तो भी नाक में डालो, कोई भी बीमारी है आप माथे रही जैसे सर दर्द नींद खराब।

0: ఆటా, మైగ్రేన్, జుకాం, ఎలర్జీ, ఛింకా,
1: ఉం
0: తాజ్లో, న్యూరో, డిప్రెషన్,
1: ఉం
0: ఏ తో భీ ఠీక్ హో జీ. సో
1: ఉం
0: కుచ్
1: మతలబ్
0: హై
1: హై గ్యా
0: పంచ
1: పంచగవ్య పంచగవ్య హమ్ కాహీ కాహీ చీజ్ మిలావణ ఓకే థా
0: పాంచో చీజ్ గాయ जैसे
1: गोबर
0: गोबर गोमूत्र दूध ऐसे दे देवे तो दूध ने जमार दही और दही मो घी निकले थे पांच चीज रो पंचगव्य बोले पांचो चीज रो पंचगव्य बने और इनमें कुछ जड़ी बूटियां साथ मिले तो पंचगव्य नशे बोले तो नाक में डालनी पड़े नाक में सोती टाइम नाक में डाल दो सर की कोई समस्या है 100% रिजल्ट है
1: तो कुल मिला ये पंचगव्य को बता रहा हूँ
0: पंचगव्य नशे
1: नाक में गल है तो ये जानकारी कहीं चीजें की बीमारियां ठीक
0: सर की कोई भी बीमारी सर दर्द नींद खराटा माइग्रेन जुकाम एलर्जी छिंका नजलो न्यूरो डिप्रेशन न्यूरो को कोई भी रोग है जैसे बेहोश हो रही है नशा बंद है दिमाग री याददाश्त चली गई है कान को पर्दो खराब हुई हो 100% रिजल्ट है
1: बहुत बढ़िया बात है तो चाहे पंचगव्य पंचगव्य नशम बनाओ
0: और गोमूत्र में 25 प्रकार गोमूत्रों अर्क बनाओ अलग अलग जड़ी बूटियां रो अलग अलग बीमारियां रे हिसाब हो और गोमूत्र लेने रो टाइम हुए 11 और अमावस 2 दिन गोमूत्र ला कोनी और सुबह रो जब फर्स्ट पहल पोत उठ गाय जो को गोमूत्र दे वो ही औषधि में काम आवे बाकी गोमूत्रों खेती वास्ते भी गोमूत्र आप एक टोकरा खेता में दो केमिकल नहीं दे तो बीमारी कौन आवे बीज में आप खेत में के यूरिया वगैरह दे रहे हो तो वह सीधी बीज में आए बीज में सीधी पेट में आए जन बीमार हो बीमार क्यों हुआ क्योंकि केमिकल शरीर नहीं सहन कर प्राकृतिक रो दीवड़ो शरीर और गौ माता जितनी चीज दे रही है गोबर गोमूत्र प्राकृतिक रो है और खेती में जाए प्राकृतिक अनाज हुई तो भी बीमारी हुए कौन शरीर में केमिकल डालो केमिकल रो शरीर है कौन शरीर परिकर प्राकृतिक है और गोमूत्र और गोबर भी प्राकृतिक है तो वो खेती में दो तो बीमारी नहीं आवे नजदीक और इरो स्प्रे करो स्प्रे बना लो कीड़ा वगैरह कौन लगे अनाज में दतुरो है
1: तो स्प्रे और बनाने का सिस्टम और सब तंगन है कहीं
0: हाँ सिस्टम
1: खेती वास्ते भी दे दो
0: खेती वास्ते गोमूत्र दे दा सिस्टम बना दा बता दा अगला ने घर बना लो खर्चो कौन लगे बिना खर्चे
1: सेवा भाव ही अपन को खाली कमाओ
0: आप गाय रो घर गोमूत्र इकटो कर लो और सिस्टम मन आ रहा पूछ लो मैं बता दे तो कोई पैसा चार्ज दू कौन सिस्टम भैंस है तो भैंस बेच और गाय लियो तो आप संसार में प्रकृति भगवान ने उत्पत्ति करी तो गाय री उत्पत्ति मनुष्य साथ ही वास्ते करी कि मनुष्य जो पंच तत्व में शरीर बनुड़ो है तो पंच तत्व बैलेंस रहने वास्ते गाय पांच चीज देवे जैसे शरीर में अग्नि की कमी होगी अग्नि अनबैलेंस होगी के भोजन पचे कौन तो घी ठीक होया करे गाय रे घी जैसे वायु की वायु अनबैलेंस है तो गोमूत्र ठीक हो पर तो अनबैलेंस है तो गाय रे गोबर ठीक हो अब भी ने या तो बीर गोबर ही भसम बना पानी में डाल पियो या बस खेती में डाल पियो चरम रोग वगैरह शरीर में आकाश तत्व खराब बनाऊ जाए तो आकाश तत्व छाछ ठीक हो तो पांचों चीज ने बैलेंस रखने वास्ते गोमाता पांच चीज देवे घर गोमाता रहे तो बीमारी को ना सब मोटी बात है
1: तो चाहे बार
0: गोमाता ही भारतीय नस्ल रही होनी चाहे किसी नस्ल की हो मार्कन ने भी 5-6 प्रकार की नस्ल रही है जैसे
1: किसी किसी है
0: साहीवाल है राठी है थारपारकर है नागौरी है कांकरेज है
1: देसी देसी है
0: हाँ जबकि मार्कन ही हमारी मार्बल बढ़ती गई मैं यूँ अलग अलग एक नस्ल में काम कौन करूँ जो मार्कन है हमारी बढ़ रही है भी हिसाब में और संवर्धन भी करो आप तो
1: जगन्नाथ जी मान लो नस्ल बता दें थाकी गाय जान मान लो एक बार गाय दृष्टिहीन है दिख भी कोने परंतु शारीरिक रूप में पूरी पौष्टिक दिख है और अच्छे दिख है सब गाय थाकी बढ़िया दिख रही है तो खान पान में विशेष थे गाय दो
0: खान पान में आने सब खड़ मत दो एक तो बिलो ना देखो बिलो ना आ रहा है पहली बिलो ना आ जाएगा है ही नहीं अब आन जीएम कर दिया जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया डीएनए चेंज कर करा वो ज्यादा उत्पन्न होने वास्ते आने सब मामलो खराब करू तो पुराना जगह बिलोना होता ना वे है नहीं खड़ नहीं देव सर्दी में देव बाजरी मूंग को कोरमो वगैरह ये टाइप घर बना लो और गर्मी में गेहूं देव जो देव लेकिन खड़ है जगह थोड़ी नुकसान
1: नहीं
0: और गाय वापिस ब्याहने में भी परेशानी हुए गर्म भी करे और चारे में जैसे मिक्स कर देव चारो
1: क्या देवे
0: जो सर्दी में चारो हुआ वो गर्मी में दे और गर्मी में चारो हुआ जो सर्दी में दे
1: जी मौसम में जो पैदा हुए सुखियां पर दे मतलब
0: नहीं।

0: फिर विपरीत मौसम में दो,
1: हाँ जब वो सूख जाए बड़े बड़े बाद में
0: कुतर है वह गर्मी में दो, सर्दी में जो कि में जहर कम ना कूड़ो है, बिना जहर को दे तो गाय भी स्वस्थ रहे वह भी बीमार
1: क्यों, मतलब आप प्राकृतिक खेती कर रही है, जैविक खेती कर रही है,
0: अगर दो रुपए पता लागे तो प्राकृतिक अनाज और प्राकृतिक खेती, जो बाजरी है 50 रुपया में प्राकृतिक है, जो कि मैं मतलब यूरिया वगैरह नहीं डाल डूब 50 रुपया में देसी बाजरी मिले को नहीं, समय गेहूँ 60 रुपया किलो है अगर देसी है तो आप कम भाव पैसा आपने डबल मिल जी भी अनाज रहा, तो आप यूरिया केमिकल ना कर बीमारी क्यों खरीदो, दूसरा कोई भाई ने दो तो वो बीमार तो पड़ी,
1: सही बात है,
0: फालतू दवाएं
1: तो थांगो, मतलब क्यों है कि गाय पालन तो व्यवसाय के हिसाब करो तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, परंतु स्वास्थ्य ने ध्यान में रख पर और गौ पालन करना चाहिए।
0: गाय 50 डिग्री टेम्परेचर सहन करे लेकिन भी नहीं हो कौन है कि आप 50 डिग्री में ही रखो,
1: सही बात है,
0: एक जगह देखियो वो के 50 डिग्री सहन करे जगह धूप में खड़ी है, इच्छा हूँ आप खड़ी रहे अलग चीज है, लेकिन कई लोग शेड भी कौन बनावे, छाया जरूरी है, प्राकृतिक छाया पेड़ पौधा लगा मार नीचे रखो तो वे सब बढ़िया है,
1: ठाकुर पेड़ पौधा भी है, पंखा भी लगे रहा, सारी सुविधाएं भी है, तो गाय ने रखो सोरी हो, यानी कोई टीकाकरण और भी करोगे,
0: टीकाकरण है मुंह पक्का खुर पक्का कराना जरूरी है,
1: वो करो
0: नहीं तो अगर खुर जैसे यही है खुर पक गया पक्को गयो तो आपने दूध दे कहीं खाओ ही कौन की दूध कहीं दे,
1: सही बात,
0: ये वास्ते टीकाकरण जरूरी है।
1: तो तय जगन्नाथ जी की पटिया बनिया हो गई,
0: हाँ मैं पंचगव्य में MD करी और आयुर्वेद में मारी एक शिष्य 80 करोड़ है, मैं वैद्य हूँ वैसे और पंचगव्य वैद्य हूँ मैं, तो मातर 500 चीज प्लस जड़ी बूटियों में औषधियाँ बनाऊँ और करीब करीब 90% शरीर बीमारियां है मैं ठीक कर दूँ,
1: बहुत बढ़िया बात है,
0: और कम बिल्कुल कम खर्चे में और कटे इलाज नहीं हो तो आपा कर देंगे।
1: तो ते वो पंचगव्य बनाने की प्रक्रिया है या और कोई चीज है, कटों कोर्स करियो कहीं पढ़ाई करी,
0: एक पंचगव्य में MD करी जो तमिलनाडु करी, आयुर्वेद रो एक कोर्स करियो जो मैं जयपुर करियो,
1: बहुत बढ़िया बात है, तो आप पढ़िया लिखिया भी हो, अभियान 10वीं 12वीं
0: कॉलेज
1: कर ले, ग्रेजुएशन भी हो साथ साथ,
0: ग्रेजुएशन में ना तो ज्ञान में ना तो पढ़ाई कौन हुए, तो
1: बिल्कुल सही, मतलब कोई
0: संस्कृत आयुर्वेद में संस्कृत है और संस्कृत वास्ते थोड़ा पढ़ी नहीं संस्कृत कौन आवे,
1: बिल्कुल सही है,
0: आयुर्वेद में जितना भी श्लोक है ना गांव में मारवाड़ी आदमी श्लोक भी बोली ना तो बात दवाई है समझ लो,
1: तो जगन्नाथ जी थे भाई ने कहीं कहने जाओ गौ पशु का पालन करे, पशुपालन तो करे पर और कहीं कहीं उत्पाद पैदा कर पर आपकी आजीविका और साधन भी बढ़ा सके और लोगों की भलाई भी कर सके,
0: किसान आदमी आप खेत वास्ते गाय गोबर और गोमूत्र दो चीज ने पकड़ ले हुए तो एक तो बीमार कौन हुए, अनाज चोको जीमी और जो को जीवा में वे स्प्रे वगैरह छिड़के ना वह पीछे छोड़ जी वो पाप है, तो पाप कौन हुए एक तो सब मोटो है, गोमूत्र स्प्रे बनाओ तो कीड़ा वगैरह कीट नियंत्रण बढ़ी कीड़ा भाग जाए मरे कोनी, जो कहो खेत में कीड़नगर है एक मतलब कीड़नगर है अनाज जिमो और एक गांव ने भोजन कराओ बराबर है, लेकिन जो के खेत में स्प्रे वगैरह करो तो कीड़नगर खत्म हुए, तो फिर एक गांव एक नगर पूरे ने खत्म करो और एक कीड़नगर मत जहर छिड़को बराबर पाप है, और तो आज देख रहे हैं बीमारियां आती आ रही है, पहली आज 50 साल पहले हॉस्पिटल कम आ और बीमार कम आ, अब हॉस्पिटल बढ़िया है जना डॉक्टर बढ़िया है, बीमारी कम होनी चाहिए ना ठीक करनी चाहिए, लेकिन बीमार बद रही है हॉस्पिटल बद रही है जो तो इलाज कर,
1: तो ठीक है जगन्नाथ जी तय के पशुपालन के बारे में और पंचगव्य के बारे में और पंचगव्य कहीं कहीं अपने फायदो है बारे में अकेली जानकारी दी, तानू घना घना धन्यवाद, राम राम सा
0: राम राम।
1: तो जगन्नाथ जी और आपका पंचगव्य बनावण की जानकारी बताई, कई प्रकार की दवाएं गौमूत्र बनावे और भी आपकी आजीविका भी चलावे लोगों की सेवा भी करे, बात तो आप करा ही हाँ, आज आप बाजार भाव बतावा, आज का बाजार भाव कहीं दिया, मूंग बिकिया 5,000 लगा 7,500 तक, काला तिल बिकिया 9,511,200 रुपया, सफेद तिल की बोली लगी 10,011,500 रुपया, ज्वार बिक्यो 4,000 5,500 रुपया, ग्वार की बोली लगी 5,400 5,850 रुपया, तारामीरा बिक्यो आज 5,800 6,200 रुपया, रायडा की बोली लगी 8,000 रुपया, जीरो बिक्यो तंगे 16,020,100 रुपया, दाना मेथी बिकी 6,000 6,500 रुपया, इस सब गोल की बोली लगी 9,012,500, सौंप बिकी 7,012,000,

की बोली लगी 5400-5700, असाड़िया की बोली लगी 5600-6000 और सिंधी सुहा भी क्या 6000-7900 रुपया भाई ने भाव दाय आया हुआ है नागौर मंडी में लार बेच सके। अबे भाई बहन देख ताला भाई सिंजापुर को समय है मनोज भाई की मनोरंजन सुनावे नहीं सुनावे गीत तो ले रहे सुना आज सीमा मिश्रा गायड़ो भाया तक करो भूख तो।

तो देखो लहरिया सुनियो बार सावण का मायने लहरिया का लोग चारों मेरे गीत गावे, सावण का गीत भी गावे, बाया बाया बाया भी लहरियो फिर है बार, तो लहरियो बाया ने पसंद आयो वाला, बाया ने पसंद आयो वाला और मन भी पसंद आयो। और आप खेती बाड़ी को तेवड़ो टाइम अटे हुए पूरो, तो बाया बाया टाबरा सगड़ा करा, राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 MHz पर। इस समय शाम के 7:30 में हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है।

0: आकाश का राजा, बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
0: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजी जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
0: जी
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो,
0: जी
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल,
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूं तुम्हारी

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
4: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक,
1: बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
6: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
6: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास बहुत बड़ी पीस है।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता? लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरी मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए।
4: ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।
3: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
6: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
7: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं।

0: एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
1: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में।
2: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
1: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस
1: जी।
0: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
1: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
3: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
3: मोहानी साहब
2: जी,
3: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
3: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
3: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
3: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
3: लाइए
2: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
2: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद ग्रामी
2: है, मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
6: वाह क्या बात है, मश्के सुखन जारी,
2: चक्की की मशक्कत भी।
6: वाह,
2: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
6: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
6: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
1: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
6: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
2: जी नहीं नहीं नहीं,
1: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
1: नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
6: क्या?
1: जी
2: एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
1: अरे मान साहब,
2: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशआर सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।

0: अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियाँ।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामे के बीच गुजरा। इस दौरान ना तो प्रश्नकाल हुआ और ना ही शून्यकाल सुचारू चल सका। हालांकि शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों को विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी विषय वस्तु रखने का मौका मिला। वहीं कुछ विधायकों ने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए अपनी बात सदन के सामने रखी। प्रश्नकाल और शून्यकाल में हुए हंगामे के कारण सदन 2 बार स्थगित हुआ। भोजन अवकाश के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अनुपूरक मांगों के साथ ही विधायी कार्य करवाने का प्रयास किया। हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद कुछ देर के लिए सदन और चला। आखिरकार दोपहर 1:45 पर विधानसभा को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल की शुरुआत करने लगे, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हुए और उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। श्री देवनानी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद मौका दिया जाएगा, लेकिन श्री जूली अपनी बात पर अड़े रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें आज उसी गेट से आने दिया गया जिस गेट से कल नहीं आने दिया था। टीकाराम जूली ने अध्यक्ष देवनानी को कहा कि पिछली बार जब वे विधायक थे और गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो विरोध करते हुए वे लोग भी उसी गेट से प्रवेश करते थे। श्री जूली ने कहा कि वे प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा और भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब वह बाहर थे तो सदन में उनके खिलाफ अनर्गल बातें बोली गई, जो सरासर गलत है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगी। तभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सदन में ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को कहा कि वे सदन में आकर अपनी बात नियमों के तहत कहे। इसी दौरान स्पीकर श्री देवनानी ने एक बार फिर सभी को अपनी अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। जब कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर नहीं गए, तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। करीब 5 मिनट तक जोरदार हंगामा हुआ। ऐसे में सुबह 11:05 पर सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा

मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मंत्री श्री दिलावर के इस्तीफे की मांग की, तभी श्री देवनानी ने सभी से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। उसी दौरान सभी कांग्रेस विधायक फिर से वेल में आ गए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि स्पीकर श्री देवनानी ने शून्यकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, अशोक भंडारी और मनोज कुमार ने अपनी अपनी बात रखी। हालांकि हंगामा काफी ज्यादा था तो सदस्य अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए और हंगामे तथा शोर के बीच जनता से जुड़े उनके मुद्दे गौण हो गए। इस दौरान स्पीकर श्री देवनानी ने सभी को अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक वैल में ही डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12:15 बजे सदन को करीब 45 मिनट के लिए दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष की वैल में नारेबाजी जारी रही। इस दौरान हंगामे के बीच ही सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया। इसके बाद आगामी कामकाज की शुरुआत हुई। इस दौरान विधायक अतुल भंसाली ने विशेष अधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 2026-2027 के सभापति की ओर से प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। ये प्रतिवेदन विधायक डॉ. सुभाष गर्ग के खिलाफ पेश विशेष अधिकार हनन से जुड़ी प्रस्ताव के संबंध में था, जिसमें प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए नियत तिथि को आगामी सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की गई। इस पर सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष का विरोध वैल में जारी रहा। इसके बाद सदन की मेज पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर ने अलग अलग विभागों की अधिसूचनाएं मेज पर रखी। इसी बीच जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से नाम पुकारा गया तो विपक्ष ने और भी तेज नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, साथ ही कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए। श्री दिलावर के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने अपने विभाग की अधिसूचनाएं टेबल की। इस दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी खत्म नहीं हुई तो विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता सब देख रही है। जनता ने जिस काम के लिए भेजा है वह काम आप नहीं कर रहे हैं। साथ ही कहा कि उन्हें सभी के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने सभी से अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। श्री देवनानी ने यह भी कहा कि सभी लोग सीट पर जाएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी और वैल में ही डटे रहे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने अपने अपने विभाग से जुड़े वार्षिक प्रतिवेदन रखे। इसके बाद समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया। इस दौरान हंगामे के बीच विधायी कार्य शुरू हुआ। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC बिल संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से रखा गया। अब इस बिल को बाद में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। जब UCC बिल पेश हुआ तो भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उन्हें सदन में जनता के मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिल रही है। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि पहले वित्त से संबंधित अनुदान की मांगों को पारित होने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार अपना बिजनेस पूरा करना चाहती है, लेकिन जनता के मुद्दों का क्या होगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही से बॉयकॉट करके जाने की घोषणा की। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक 1:21 पर सदन की कार्यवाही से बॉयकॉट करके चले गए।
इसके

0: बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विनियोग संशोधन विधेयक का पुनरुत्थापन किया। कांग्रेस की बॉयकॉट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में कहा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है। मीडिया के सामने उन्होंने गलत बयानबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से भागने का काम किया है। सदन में वे किसी भी विशेष मुद्दे पर नहीं बोले। राजस्थान की जनता सब देख रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कहा कि वह भी इस घटनाक्रम से जुड़े तथ्य सदन के सामने रखे ताकि जनता को पता चले कि कल क्या हुआ था। इस पर श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा का गेट आज भी खुला है और कल भी खुला था। विधायकों के लिए गेट नंबर 6 सिर्फ पैदल एक एक करके आने वालों के लिए खुला रहता है। समूह में विधानसभा के गेट से आने की अनुमति ना पहले थी और ना ही आगे होगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए गेट गुरुवार को भी खुला था, लेकिन गुरुवार को एमएलए समूह में आए तो उन्हें रोका गया। इसका कारण ये है कि पिछली बार जब सत्र के दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो विधायकों के बीच ही दो बाहरी लोग भी घुस गए। हालांकि उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने पहचान कर बाहर निकाल दिया। ऐसे में समूह में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। श्री देवनानी ने कहा कि मार्शल ने उन्हें जानकारी दी कि विधानसभा के गेट पर गुरुवार को 2-3 लोग चढ़ गए। ये नियमों के हिसाब से अवांछनीय है। उन्होंने अपील की कि भविष्य में इस तरह की बातें ना हो। इसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हुआ और दोपहर 1:45 पर सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
2: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने नए जमाने के। यह कार्यक्रम का पहला गीत तलाश फिल्म से, आवाज वसुंधरा दास की।

यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री

0: नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
5: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री

0: जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंग रू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए

0: सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में लीजिए समात फरमाइए चंद गजलें। पहले पेश है पंकज उदास की गाई ये गजल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये स्वर है जगजीत सिंह का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: ये मखमली आवाज़ है गुलाम अली की।

0: अभी आप सुगम संगीत में चंद गज़लें समात फरमा रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 9:15 में हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए एसडी बर्मन की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गंगा जमुना फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में मुग़ल-ए-आज़म फिल्म से। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।
1: मस्त बहा

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

0: कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।
1: Ha ha ha!

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने मां की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।

दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार,
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.5।

3.7 MHz पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।